आनंद पाया, बड़ भागी हूँ आनंद पाया। ग्रह प्रगटे प्रभ आ रही थी, वाहे गुरु सारे जप लो।

ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी लिखो ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल

जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सपंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सपंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

जतन काट कल काल रहाओ। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज तनासरी राग दे विच बख्शिशां कर रहे हैं, जो रहाओ वालियां पंक्तियां हैं, साधु संग भजो गोपाल आन संजम केशना सूझ है ए जतन काट कल काल। कि भाई साधुआं दी संगत विच जुड़ के बैठना, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र निघी गोद विच बैठना और करना की है भजो गोपाल, उस परमात्मा दी बाणी दा भजन करना, गोपाल जेड़ा सारी सृष्टि नूं पालन वाला है। आन संजम किश ना सूझ यह जतन काट कल काल। पातशाह कहिंदे ने इको एक जतन है, इको एक उद्यम है कि काल दी जिहड़ी फाही है, जन्म मरण दा जिहड़ा गेड़ है, 84 लाख दी जिहड़ी जून है, हे इंसान जेकर तू इहदे विचों मुक्त होना चाहुंदा है ना, चाहुंदा है, मनुखा जन्म मिलिया है, काल दी फाही कट हो जावे। होर बथेरे यतन करके वेख लए पर सब तो उत्तम कर्म केड़ा है, वो है साधु संग भजो गोपाल। ते जेड़ा हिरदा उस परमात्मा दी बाणी दा सिमरन करदा है, संगत करदा है, ते पातशाह कहिंदे ने परमात्मा बड़ा दयालु है, तू एक बारी उस परमात्मा नूं याद कर, तेरे जीवन दे विच जिहड़े दुख ते कलेश हन ना, वो परमात्मा कट देणगे।

जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए आद शुरू तो ही अंत अखीर तक। पातशाह कहिंदे ने तू एक बार उन्हूं याद तां कर, वह दया दा सागर है, उस तो बगैर होर कोई नहीं तेरा सहारा बनेगा। उन्हूं याद कर ते उन्हूं जपया कर, जदों जपेगा जन्म मरण निवार हर जप, हरी नूं जपेगा जन्म मरण दा गेड़ मुक जाएगा। सिमर स्वामी सोए, वेद सिमरत कथै सास्त भगत करै विचार, मुक्त पाई है साध संगत बिन सजाए अंधार। पातशाह कहिंदे ने वेदां विच सिमरतियां विच शास्त्रां विच धार्मिक पुस्तकां दे विच उन्हां सारिआं दा इक्को ही इक निचोड़ है, किहड़ा? ते रब दे प्यारे भी इस गल दी विचार करदे ने, किहड़ी विचार? मुक्त पाईए साध संगत, मुक्ति प्राप्त करना चाहुंदा है, मुक्ति दी दात साध संगत विच प्राप्त हुंदी है। बिन सजाए अंधार, अग्ञानता दा जिहड़ा हनेरा है ना, विकारां दा जिहड़ा हनेरा है, माया दे मोह दा जिहड़ा हनेरा है, वह भी दूर हो जाता।

शब्द ब्राह्मण है, खत्री शब्द सूर शब्द शूद्र शब्द प्राप्त है, सर्व शब्द एक शब्द जे कु जाने पे हो नानक तांका दास सुंदर जम दियो महला दूजा। एक कृष्ण सर्व देवा देव दिवा आत्मा